0: राजू, राजू, राजू, राजू, राजू, राजू, राजू, ये राजू इंगे ने पढ़ी ठगे?
1: अम्मा, अम्मा, अम्मा ये बोट मुड़ की पढ़ी ची, ये, आशा ये ने बिटे तो पढ़ी ची, ना तानी पकड़ ला वाला डिटे ने, अपन तो तानी ला मुड़ की ची, अम्मा कड़ल या आशा वो मुड़ कर ची,
0: राजू, इधर पर आराधे, पर, उनके देवन येसु मेले विश्वास रखले, अवर कट्टाई वो बोटे उनके तेरे पितर वारे, आरा कुड़ा दे, आरा दे, इधर पारे राजू, देवन येसु नमलोड़े रच्चकर, अवर निच्छे नमको बुद्धवी सेवारे, नमक येंद्द कोरी वरादे, आवरे उनोड़ आशा आवी तेरे पितर वारे, इंगे पारे, येन्ने इधर के நான் உலகின் முடிவு வரை எப்போதும் உன்னுடன் இருப்பேன். தேவன் இயேசு எப்பவும் நம்ம கூட இருக்காரு. உன் ஆசை நிச்சயம் உனக்கு கிடைக்கும். சரியா?